शरीफ वांग हुंदा सी। इन्हां दे आजान ते सन्मान करने नाल अरब दे होर देशां दे आए हाजी जो हुण आले दुआले आ रहे सन अदब विच बैठ गए। गुरु जी का जवाब सुन के ते वरत्या ए कौतक के मक्का घूम गए। सारे सन्मान करन लग पे गुरु साहब का। फिर गुरु जी दियां ते इन्हां फकीरां दियां होर अरब आदिका पीरां फकीरां दे नाल गल्लां बातां होईयां जो हिंदियां नाल होईयां

सचमुच दा उलमा हो जाएगा। त्याग कर आस अंदेसे दा ते दिलगीरियां दा, मन विच दया दा निवास रख। कुफर तकबर त्याग दे, काम अग्नि दे भांबड़ तो मन बचाओ, ते शीतल सुख दा जाणू हो। इउं कर बंदगी रोजे रख, ता तेरा सिदक पूरा होवेगा निभेगा। रुकन दी सलाम कीता, आख्या वाह वाह, आज खुदाए दे।

दुनिया का असर डाढ़ है, खुदा किस तरह मिलता है। ये सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है, जिसनू उन्होंने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल तरबां दा प्रीतम सी, नैन उचे हो गए ते डाढ़े मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप सरवण कर रहे हो। यक अर्ज गुफ्त

अल्लाह ए वाहेगुरु तू वड्डा है करीम है दया करन वाला बेऐब है तेरे विच कोई ऐब नहीं तू दुनिया नु पालन वाला है ए दुनिया मुकामे फानी ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नानक बगोयो दे जन दुरा तेरे चाकरा पाखा दुनिया खत्म होने वाली ओ धर्म राजा तो वाला तो फड़ के ले जावेगा।

नानी की गल कहंदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैरां दे खाक हो जा।

मटके अंदर पूज कराई। फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी दियां खड़ावां यादगिरी ते जियाहत वास्ते रख ली। इस गल की गवाही

मैं डर के काबे दी उस्तत की थी, जिस तू ओ मुड़ के फिर अपनी असली जगह ते आ गया। इस गल दी गवाही वास्ते पढ़ो।

एक ही घटना हो गई है, शायद मेरिया अखां विच खलल आ गया है। आकाशवाणी हुई, तेरी नजर विच फर्क नहीं पिया, कब एक कमजोर तीवी नू, एक कमजोर औरत नू दर्शन देन गया है, उदे स्वागत ले गया है, जो इस पास से आ रही है।

ना तो केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल दी तरह मनदे हन। जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र करदे होए

मैं घरों कटोरा लेके आया, किस कटोरे विच समुंदर दा पानी भर लवां। सवेर दा लगा सी पर कटोरे विच सारा समुंदर मैं ना भर सके। फिर ख्याल आया जे कटोरे विच समुंदर दा पानी नहीं आ सकदा, कटोरा तां समुंदर विच समा सकदा है। मेरा कटोरा समुंदर विच समा गया, मेरी चिंता खत्म हो गई। उस फकीर ने उस लड़के दे पैरां दे मत

अपने इस दिमाग दे विच उस परमेश्वर दी कायनात उस परमेश्वर नूं भर लवां उहदा अंत पा लवां पर हुण पता लगा है उस मंदिर दी तरह अथाह है उहदा अंत कोई नहीं पा

करते हैं आपके दिवस पे, बहुत बहुत बधाई होगी ऐसे उपलक्ष्य पे। पहला दो तीन मिनट वास्ते इस मौके का राग पवित्र बाणी जी स्लोक गायन करेंगे, उस तो उपरंत एक शब्द होर गायन करके आपका सुखमा दे जाच पावांगे। प्यार नाल सुनो।

फिर उदासियां वाला पेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरां, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी पंगर नाथ, तोए दुध विच क्यों कांजी पाई, फिटिया चाटा दुध दा रिड़कियां मक्खन हाथ ना आई, ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई, उदासियां वाला साधुआं वाला पेख लहा के तू फिर संसारी कपड़े पा रहे हन। इस तो भाव है कि फिटिया चाटा दुध दा रिड़कियां मक्खन हाथ ना आई, पेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई, इसका जवाब दियो। धन गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता, नानक

फिर जदों जस होवे ता बड़े वरदान देंदे हां ते कोई अपजस कर देवे उसनू शराप देंदे हां। इसलिए जिथे वर शराप है उथे मेरी कल्पना है, साडा मन कल्पदा रहिंदा है। सानू सच दा राह दर्शाओ ते जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच निम्रता सहित उन्होंने बेनती की ना, भाई साहब गुरदास जी।

दे महान आगमन मेरे आ रहा है। ए दिन ए रातां ए बख्शीशां दे समय हन, इस नूं जप जप के असी सफल करना। हो सकदा इना दिना दा अमृत वेले जागया होया, गुरु नानक सानूं सदा लई अमृत वेला दे देवे। जो सिदक श्रद्धा प्यार दे नाल भाई कीर्तन विच जुड़दा है, कीर्तन दी समाधि लाउंदा है, ए जपा सिर जप है, तपा सिर तप है। कितना भी कठोर हिरदा होवे, अज इस तरह सिद्धा ने धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ए गुरु नानक जिसने एक वेरा भी तैनू धन के है ना, ओ जन्म मरण तो रहत हो गया। इसलिए जगत दे गुरु हन कौन प्यार

बाबे ने आखिया ओए चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं जे आए असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं। बाबा जानी जान है बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है बाबे दे ओले की हो सकदा है। गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने ओए मित्रा चंगा तू मित्र है किन्नी प्यार नाल तैनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है। संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जियां गल्लां करदा है पर सतसंगियो बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करदे सन जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा वो कदी भी गुरु नानक दी नजर विच बख्शिया नहीं दे जांदा।

पूजाओ निवाजू ही। ए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहिगुरु दा राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी दुखी देखें ते तेरा मन भी मोम की तरह पिघल जा।

ऐसा उपदेश गुरबाणी दा अपने धर्म च पक्के रहो। तुसी जिस धर्म नूं भी मनदे हो पर असल विच धर्मी ओ है जिहड़ा सब नाल प्यार करे, क्योंकि धर्मी किसे नाल नफरत नहीं कर सकता। गुरु घर विच सिख धर्म विच अणख नाल जीवना, धर्म दे किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, यह उपदेश है और यही उपदेश सारे वास्ते सांझा है। अणख नाल जियो, अपने धर्म च पक्के रहो। पर धर्मी होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरिया नूं माड़ा कहिए या दूसरिया की निंदा करिए। कमियां होंदियां हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान का फर्ज बनता है। जिस वेले धन गुरु नानक साहब का अवतार होया, ये झगड़े उस वेले भी सन। ते गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई।

गुरु साहबा ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई, आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और यह जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां देईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा

तेरे नाल किवें मिलाप होवे मोहे परदेशन तू अपने देश विच वस रहे हैं मैं परदेश विच